0: अस्सलाम वालेकुम सामी, हम सदाए तुर्की से मुखातिब हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 15 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात है। इस वक्त अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक सपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: आप हमारे नशियात को शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज़ पर सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से सुन सकते हैं।
0: और आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें, सिलसिलावार प्रोग्राम, अहम ईजादात और सैर सियाहत पेश किए जाएंगे। हमारी नशात इस पे मामूल अंकरा के मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे इख्तिताम पसीर होंगी। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाहीन
1: सगीर अहमद
0: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं उसके खुराई।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: टेक्नोलॉजी की दुनिया के अरबपति एलन मस्क ने बुध के रोज जारी करदा बयान में कहा है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को इक्तदार छोड़ देना चाहिए। मस्क ने सोशल मीडिया एक्स से लिखा है कि कत्लोगारत का सिलसिला जारी है, लिहाजा ज़ेलेंस्की के जाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने स्पेस एक्स के तैयार करदा सेटेलाइट इंटरनेट निज़ाम स्टारलिंक की सुस्त रफ्तारी की शिकायत की और मस्क से मुतालबा किया है कि वो इस रफ्तार को बहाल करें। कीफ ने जंग से तबाह हाल मुल्क के लिए अमरीकी हमायत के हवाले से खदशात का इजहार किया और कहा है कि अमरीका कीफ को रूस के मुमकिन मिसाइल हमलों से बेखबर रख के और यूक्रेन के मुवासलाती निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले सेटेलाइट सिस्टम में तब्दीलियां करके रूस की मदद कर रहा है। इस तरह यूक्रेन की फौजी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत कमजोर हो रही है। तहम मस्क ने कहा है कि किसी भी किस्म की रुकावट की जिम्मेदारी अमरीकी हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने स्टार शील्ड और स्टारलिंक के दरमियान फर्क वाजे किया और कहा है कि यूक्रेन मैदान जंग में मुवासलात के लिए स्टार शील्ड पर इनहसार करता है जिसे अमरीकी हुकूमत कंट्रोल करती है, जबकि स्टारलिंक एक शहरी सेटेलाइट निज़ाम है जिसे यूक्रेन भी इस्तेमाल करता है। ताहम इसे हमलावर फौजी कार्रवाई में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है।
2: यमनी सरकारी अफवाज ने तस्दीक की है कि जनूब मगरबी सूबे ताज में शदीद फौजी झड़पों के दौरान 200 से ज़ायद हौसी मलेशिया के अरकान हलाक या ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि सरकारी अफवाज मुतनाज़िया पोजीशनों और सप्लाई लाइनों को वापस लेने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। यमनी फौजी कमांड के मुताबिक बुध की सुबह शुरू होने वाली लड़ाई दोपहर तक काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसमें एक फौजी गाड़ी तबाह, दो टैंकों को नुकसान पहुँचा, एक मुसल्लह काफिले को नाकारा बनाया गया और एक ड्रोन को मार गिराया गया। यह कशीदगी सलीब यमन मुहिम का हिस्सा है जो इस माह के शुरू में यमन की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की जानब से हौसियों के जेर कब्जा इलाकों बशमूल दारकूमत सना को

0: आजाद कराने के लिए शुरू की गई थी।
1: रूस के एक कंपनी एग्जीक्यूटिव ने बुध के रोज बताया है कि एक ड्रोन रूस के सरकारी मालिक की 30 बैंक के डेटा सेंटर से टकराया है, जो कि असासों और सार्फिन की तादाद के लिहाज से रूस का सबसे बड़ा बैंक है। तहम बैंक के सिस्टम और खिदमात मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। यह हमला बज़ाहर यूक्रेन की जानब से रूसी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने वाली इंतकामी मुहिम का ताज़ा तरीन वाकया मालूम होता है। रूस की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी यांडेक्स ने महीने के आगाज से अब तक अपने डेटा सेंटरों पर कम से कम 3 ड्रोन हमलों की इत्तला दी है। रूस वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन ने मंगल और बुध की दरमियानी रात रूस और जजीरा नुमा क्रीमिया पर 900 से ज्यादा ड्रोन फायर किए थे।
0: चीन ने यूकोए 2EY4 कैरियर रॉकेट के जरिए कामयाबी के साथ 10 सैटेलाइट मदार में भेज दिए हैं। चीन की सरकारी खबर एजेंसी शिनहुआ ने बुध के रोज शाया करदा खबर में कहा है कि खला में भेजे गए 10 सैटेलाइटों में से 8 को मसनू जहानत की कंप्यूटिंग सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है। शिनहुआ के मुताबिक रॉकेट चीन के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:40 पर चीन के शुमाल मगरबी इलाके में वाकई डोंगफेंग कमर्शियल स्पेस इनोवेशन पायलट जोन से रवाना हुआ और तमाम 10 सैटेलाइट्स को उनके मुकर्ररा मदारों में पहुंचा दिया। उनमें से 8 सैटेलाइट चीनी तजारती खलाई कंपनी एडीए स्पेस के स्टार कंप्यूट मनसूबे के दूसरे ग्रुप का हिस्सा हैं। इन सैटेलाइटों को डॉन डस्क यानी तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के औकात से मुताबिकत रखने वाले मदारों में काम करने के लिए तैयार किया गया है। सैटेलाइट आला कारकर्दगी के हामिल कंप्यूटिंग निज़ाम, लेज़र मवासलाती आलात और कम रोशनी में काम करने की सलाहियत रखने वाले कैमरों से लैस हैं।
1: रोजनामा डान के मुताबिक पेशावर के इलाके आफरीदियाबाद में निजी स्कूल की छत इस वक्त गिर गई जब तलबा कमरा जमात में थे। सेहत के मुकामी हुकाम ने इत्तला दी है कि छत गिरने से 33 तलबा और 2 उसातज़ा जान बहक हो गए हैं और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हुकाम ने कहा है कि जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों में से 5 की हालत तश्वीशनाक है। हुकाम ने यह भी बताया है कि मलबे तले दबे तलबा को निकाल लिया गया है। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने इस वाकये के हवाले से एक्स से जारी करदा बयान में गहरे दुख का इजहार किया और जान बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत की है। जरदारी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि जख्मियों को आला तरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जाए और मुतासरा खानदानों की मदद की जाए। इनका कहना था कि इस सानहे की वजूहात की मुकम्मल छानबीन की जाएगी।
0: और इस्तांबुल हवाई अड्डा दुनिया भर में सबसे ज्यादा आलमी रवाबित फराहम करने वाला हवाई अड्डा बन गया है। हवाबाजी के आदाद और शुमार फराहम करने वाली मारूफ कंपनी ऑफिशर एयरलाइन गाइड की जानब से जारी करदा मेगा हब्स 2026 की दर्जा बंदी में इस कामयाबी का ऐलान किया गया। इस नई दर्जा बंदी के मुताबिक इस्तांबुल हवाई अड्डे ने लंदन के हेथरो हवाई अड्डे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे ताकतवर आलमी रबते वाले हवाई अड्डे का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। CNN इंटरनेशनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इस्तांबुल के एयरपोर्ट के CEO सलाहुद्दीन बिलगिन ने इस तारीखी कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने वाज़े किया कि यह नतीजा कोई इत्तफाक नहीं है बल्कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी और दुरुस्त सरमायाकारी का समर है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्तांबुल हवाई अड्डा न सिर्फ यूरोप का सबसे मसरूफ तरीन मुसाफिर एयरपोर्ट है बल्कि फ्रैंकफर्ट को भी पीछे छोड़कर अब यूरोप का सबसे बड़ा कार्गो मरकज बन चुका है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई।
1: और लीजिए सामिना बे गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं बिर आशिक़ ऐसी और गाया है काया खान ने।

0: वेलक्रो टेप इस फैशन डिजाइनर की कामयाबी के बाद एक फैशन आइकॉन बन गया, जिसे फैशन शो के लिए आखिरी लम्हात में अपने कपड़े मुकम्मल करने पड़े, लेकिन जब उसके इस्तेमाल के लिए बटन खत्म हो गए तो उन्होंने मेज पर रखी वेलक्रो टेप का सहारा लिया। स्विस मस्जिद की वेलक्रो प्रोडक्शन में 1978 तक तकरीबन इजाराधारी थी, लेकिन जब वो अपने पेटेंट के हकूक की तजदीद करना भूल गए तो सबसे पहले चीन और जनूबी कोरिया में तैयार की जाने वाली सस्ती तकलीद ने मार्केट को भर दिया और फिर मकामी सनतकार हर एक मुल्क में अपने अपने ब्रांड्स के साथ नमूदार हुए। वेलक्रो टेप्स, जो आज दुनिया की सबसे ज़्यादा कारआमद इजादात में से एक हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं, ना सिर्फ कपड़ों या जूतों में बल्कि सजावट की मसनूआत से लेकर दिल की सर्जरी तक बहुत से मुख्तलिफ शोबों में ये देखी जाती है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।